0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ गाओ चले, एपिसोड 12। आज का कार्यक्रम आधारित है गाओ फलेल माजरा अंबाला पर। प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपुरी, राज्य सरकार के पीएचई विभाग के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। इस समय हम अंबाला के गांव में आए हैं जिसको हम फलेल माजरा के नाम से जानते हैं, और हमारे पास राज्य सरकार के PHE डिपार्टमेंट के अधिकारी भी साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, पर सबसे पहले हम जो गांव के सरपंच है श्री विजय कुमार जी, हम पहले उनसे बात करेंगे, गांव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गांव किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या यहाँ पर अच्छी चीजें हैं, और अगर कोई कमी भी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गांव के सरपंच विजय कुमार जी के साथ। विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम आओ गांव चले में। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन संक्षिप्त सा बताएं।
1: सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार
0: जी।
1: नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गांव फरेल माजरा से सरपंच हूँ। मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन है, जो कि मैंने SD कॉलेज अम्बाला कैंट से पास आउट किया है। 2016 से मैं गांव फरेल माजरा का सरपंच हूँ
0: जी।
1: फर्स्ट टाइम 2016 में मैं सरपंच बना था, उसके बाद गांव वालों ने दोबारा मौका दिया
0: जी,
1: तो मैं दोबारा सरपंच बना। अब मैं लगातार दूसरी बार सरपंच हूँ। हमारा एक छोटा सा गाँव है हमारा, और बहुत ही प्यारा गाँव है
0: जी।
1: ज़्यादा घनी आबादी वाला मेरा गाँव नहीं है, लगभग 1200 के आसपास हमारे यहाँ पे जनसंख्या है, और 800 के आसपास हमारा वोटर्स है यहाँ पे सर।
0: गांव फलेल माजरा में?
1: गांव फलेल माजरा
0: जी। इसके आसपास के जो गांव है वो कौन कौन से हैं?
1: मेरे आसपास जो है, हमारा जो बस स्टैंड लगता है, जिसको आप जी गांव की लैंग्वेज में कहते हैं कि आपको बस कहाँ से मिलती है
0: जी, जी
1: है ना, वो मिठापुर है। मिठापुर से हमें बस मिलती है। अब हमारी BJP सरकार ने तो काफी फैसिलिटीज कर दी है कि बस हमारे गांव से भी होकर निकलती है
0: जी।
1: पर पहले अगर देखा जाए तो हम लोग मिठापुर से बस पकड़ते थे। जैसे कि मैं अगर अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम की बात करूं तो हम लोग मिठापुर से बस पकड़ते थे। मेरे गांव से अगला गांव अकबरपुर है, उससे नेक्स्ट संभालका है, फिर धुराड़ा है, चुडियाली है, चुडियाला है, और ये मेन रोड से जाकर दिल्ली हाईवे को टच करता है।
0: जिस गाँव के सरपंच, आप फलेल माजरा गाँव को ही देखते हैं
1: जी,
0: जो आसपास के गांव हैं उनके सरपंच अलग होंगे, पर फलेल माजरा के सरपंच आप हैं
1: जी। जी बिल्कुल।
0: हम यहां पर आज एक खास मकसद से आए हैं, और हमारा मकसद है कि आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, वो ये कि आमतौर पर जब हम किसी भी सरपंच से मिले हैं, वो सरपंच जो है वो ज्यादा एज के होते रहे हैं, आप एक युवा सरपंच है। आप मुझे ये बताइए कि आपके सरपंच बनने से फलेल माजरा गांव में क्या क्या तब्दीली आई, क्या क्या बदलाव आए, क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब युवाओं के हाथ में कोई भी कार्य होता है और वो किस तेजी से आगे बढ़ता है, वो उन्नति क्या करता है।
1: देखिए, इस बात के लिए तो मैं बहुत ज्यादा ऋणी भी कहूंगा अपने आप को, और मैं एहसान ही मानता हूँ सरकार का कि जिन्होंने युवाओं को मौका दिया ताकि वो आकर अपने क्षेत्र की बागडोर संभाले, अपने क्षेत्र में काम करें, क्योंकि राजनीति में अगर आना है तो उस इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। उससे पहले तो अनपढ़ आदमी भी सरपंच बनते थे, उनको नहीं पता था गांव में क्या विकास करना है। ग्राम सचिव होते थे, वो उनके अकॉर्डिंग ही चलते थे, पर जो पढ़ा लिखा पर्सन है वो गाँव का विकास करे, और वाकई उस चीज से विकास हुआ है। हम जब ब्लॉक्स में जाते हैं अपने, जहाँ पे सभी सरपंच इकट्ठे होते हैं, ये मेरा मानना है अपना, ग्राम सचिव जो बोलते थे सरपंच उसको मानते थे और वैसे ही काम होते थे। अब सरपंच पढ़े लिखे हैं, वो अपनी समझ से अपने गांव का विकास कर सकते हैं। हमें जिस चीज की जरूरत है गांव में, पहले हम उस काम को प्रेफरेंस देते हैं।
0: आप कितने साल से इस गांव के सरपंच हैं?
1: अगर मैं आज की बात करूं तो आज मुझे लगभग पिछले 5 साल, फिर 2 साल बीच में पंचायतें नहीं रही तब भी सरपंच, कार्यवाहक सरपंच और 3 साल और आगे, तो 10 साल लगा।
0: चलिए, अगर हम 5 साल भी मान के चलते हैं जो कार्य का समय रहा है, आपके कार्यकाल में गांव ने क्या क्या ऐसी उन्नति देखी जो गांव वालों के लिए जरूरी थी?
1: देखिए सर, नालियां गलियां
0: जी,
1: ये तो आम सी चीज है कि जरूरत है इंसान की।
0: विजय जी, मैंने आपसे ये पूछा कि आपके सरपंच होते हुए आपके गाँव में आपने कहा कि नालियां सड़कें बनी है, कोई ऐसा कोई बड़ा काम किया जो आपके समय हुआ?
1: कुछ चीजें ऐसी होती है गांव की, बड़ी जरूरत होती है और उसकी तरफ लोग ध्यान देते नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक अपना जन्मन सा कारण बताता हूँ
0: जी।
1: जिस रास्ते से आप अभी आए हैं
0: जी,
1: अगर आपने उस रास्ते पे लेफ्ट हैंड पे देखा तो जहाँ पे हमारा पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल है, आज से अगर बात करूं मैं 10 साल पहले, तो वहां पे 25 फुट गहरा तालाब था।
0: अच्छा।
1: जो कि गांव वालों ने सिर्फ मिट्टी उठा उठा के यूज कर करके उसको तालाब का रूप दे दिया। वो कम से कम 20-22 फुट गहरा था और लगभग 1 एकड़ में था
0: जी।
1: और मेरी ये इच्छा थी कि मैं उसको पार्क का रूप दूं, क्योंकि वो सड़क के नजदीक था कि अगर वहां कोई गिर जाए
0: खतरा है, माल मवेशी गिर जाए,
1: जान और माल का नुकसान होगा ना। तो मैं लगातार 10 साल से उस मुहिम में लगाऊ, आज मैं कामयाब भी हो चुका हूँ। मैंने उस जोड़ को फिल किया, मैंने उस जगह की चारद्वारी की और आज मैं उसको एक सुंदर पार्क का रूप देने जा रहा हूँ।
0: आपको हम साधुवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम गांव में जाके गांव की तरक्की देखते हैं, हमारा मकसद केवल यही होता है कि जो हमारे श्रोता है, जहां तक हमारे सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार की आवाज जाती है, वहां पर ये आवाज जाए कि जब एक गांव अपने गांव को साफ सुथरा रख सकता है, स्वच्छ बना सकता है, तो बाकी गांवों के जो सरपंच या मुखिया हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं। अब हम मेन मकसद पे आएंगे जिसके लिए हम आज आपके पास आए हैं।
1: जी जी।
0: हमारे पास हरियाणा सरकार के जो PHE डिपार्टमेंट के अधिकारी जन है वो भी साथ हैं
1: जी।
0: उनके समक्ष मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपसे सही व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है जो इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। पहला प्रश्न ये है कि क्या आपके गाँव में नल से जल हर घर में आता है कि नहीं आता है?
1: बिल्कुल आता है सर।
0: उसका आने का समय क्या होता है?
1: मॉर्निंग एंड इवनिंग।
0: यानी कि पानी की किल्लत जो है वो गांव में नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं।
0: कुछ समय पहले अगर हम जाएंगे तो गांव के औरतें बाल्टी या मटका लेके बहुत दूर दूर से पानी ले आते थे अपने घर के इस्तेमाल के लिए
1: जी।
0: क्या उस प्रथा से महिलाओं को मुक्ति मिली है? आपका गाँव क्या कहता है
1: इस बात के ऊपर? थोड़ा समय आपसे चर्चा करना।
0: हाँ बताइए।
1: जो आपने वो मटका लाने की बात या बाल्टी लाने की बात की है ना, वो बाकी हमारे यहाँ था, हरियाणा में था
0: जी।
1: अगर आप बात करें अंबाला जिला की, तो यहाँ पे शायद वो चीज कम थी काफी। यहाँ पे हैडपंप थे
0: जी,
1: है ना, तो उससे पानी की सप्लाई होती थी। मैं बात करूँ आप उत्तरी हरियाणा शायद चले जाए, दक्षिण हरियाणा सॉरी, तो वहां पे प्रथा ज्यादा थी। आज वहां भी वो प्रथा खत्म हो चुकी, हमारे यहाँ तो खत्म हो ही गई है।
0: हमारा जानने का मकसद यही है कि अगर बदलाव आया है, अगर हमारी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर काम कर रहे हैं, क्या उसका बदलाव धरातल में है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: है? बिल्कुल
0: यही है। मैं जानना चाहूं।
1: बिल्कुल है सर, बिल्कुल।
0: दूसरा पॉइंट ये है कि जब बारिश होती है तो क्या यहाँ पर पानी के संरक्षण का कोई ऐसा कोई इंतजाम है, या बारिश होने के साथ जो जमीन में पानी जाता है वही ट्यूबवेल के जरिए वापस आता है?
1: नहीं नहीं, तालाब है हमारे यहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तालाब में पानी इकट्ठा होता है बारिश का पानी, और वहां से उस पानी को यूटिलाइज फसलों में भी किया जाता है, ठीक है ना, और धरती तो रिसाव करती ही करती है पानी का
0: जी। इसके साथ एक और प्रश्न मैंने आपसे पूछना है, वो आपके गांव की साफ सफाई यानी कि स्वच्छता
1: जी।
0: जो हमारे देश में इस समय जो एक कार्यक्रम हम रेडियो पे करते हैं, उस कार्यक्रम का नाम है स्वच्छ भारत की कहानी रेडियो की जुबानी। उसमें हम जब गाँव में जाते हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गाँव में साफ सफाई का साधन क्या है। ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गाँव में जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या वो अपने अपने घर के बारे में तो साफ सफाई करते ही हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो गाँव के रस्ते हैं, गलियां हैं
1: जी,
0: क्या वहाँ पर साफ सफाई सरकार की ओर से या पंचायत की ओर से होती है कि नहीं होती है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आपका गाँव कितना स्वच्छ है ये जानना चाहता हूँ।
1: स्वच्छता के बारे में तो बताऊँ मैं, आप मेरे गाँव में आए, आपने आसपास देख ही लिया होगा
0: जी, जी।
1: वैसे सरकार ने इस चीज के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि हर गांव में सफाई कर्मचारी, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो लगाए हुए,
0: ठीक
1: है ना, जो गांव की गलियां नालियां प्रॉपर उनको सफाई रखते हैं
0: जी।
1: लोगों का अपना दायित्व होता है, लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है कि अपने जगह को साफ करें, गलियां नालियां को जो सरकार ने सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं वो करते हैं साफ, और मेरा गाँव बिल्कुल साफ और स्वस्थ है।
0: एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो है पर्सनल हाइजीन का। पर्सनल हाइजीन का मतलब है मेरा व्यक्तिगत साफ सफाई कितनी है, क्या गांव के लोग इतने सक्षम है जो अपने आप खाना खाने से पहले हाथ धोना ये जरूरी है, या सवेरे उठ के ब्रश करना जरूरी है, या महिलाओं का जो पर्सनल हाइजीन है क्योंकि जब महावारी होती है, क्या उसका प्रबंधन आप किस तरीके से देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि आपका गांव कितना आगे है या अभी भी कोई कार्य करना बाकी है?
1: आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हरियाणा के गांव वो गांव नहीं रहे, अब ये शहरों से भी शायद ज्यादा आगे निकल चुके हैं।
0: हमें बहुत खुशी है इस बात की जी।
1: अगर आप मेरे गांव की बात करें तो मेरे गांव में साक्षरता 100% है
0: जी।
1: हर इंसान पढ़ा लिखा है
0: जी।
1: सभी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मेरा मानना है कि हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब तो है
0: जी।
1: और जहाँ पे एजुकेशन होगी और साथ में इनकम सोर्स होगा तो वहाँ सफाई अपने आप
0: है। ठीक है,
1: मेरे गांव में सफाई के मामले में हर इंसान, मतलब सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना धोना हर पर्सन।
0: विजय जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी आसपास के जो हमारे अंबाला के वासी हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देश बदल रहा है, गांव बदल रहा है, इसलिए हम आपके पास आते हैं क्योंकि आप इस गांव में रहते हैं, आप इस गांव के मुखिया है, तो आप इस गांव के बारे में सही जो सूरत है वो आप बता पाएंगे
1: जी।
0: आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आप 5 साल से ज्यादा से सरपंच है गांव में
1: जी।
0: एक टाइम होता था जब गांव में कोई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, तो वो कोई बड़ा व्यक्ति तो सरपंच ही होता था, उसके पास जाके हम उस मसले का समाधान करते थे
1: जी।
0: आज के दौर में क्या आपको ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है? क्या आपको भी कहीं पर ये आदेश देना पड़ता है कि ये मेरा फैसला है और ये लागू होना चाहिए, या पुलिस का हस्तक्षेप होता है?
1: देखिए, इसको हम परेशानी तो नहीं कहेंगे
0: जी,
1: क्योंकि जहां, अब जैसे कहते हैं ना कि जहां 4 बर्तन होते हैं वो तो खड़कते हैं। अब जब 4 लोग इकट्ठे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है
0: जी।
1: और वो मेरा सौभाग्य है कि मैं जो सरपंच उन फैसलों का निपटारा करता हूँ। वो लोग जो लड़ते हैं आपस में, वो आपस में तो फैसला नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं कि जी गलती निकालते हैं
0: जी।
1: जिसकी गलती होती है हम उसकी गलती निकालते हैं, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है।
0: यानी कि उसको आप अपने घर के मींस गांव के अंदर ही उस मसले को आप सॉल्व करते
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
0: पुलिस तक जो बात है वो जाती
1: नहीं, नहीं, नहीं, वहां तक जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं
0: जी। जी, हमें बहुत अच्छा लगा इस गांव में आके, और जब हम इस गांव में आए, अंबाला से ये तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है
1: जी,
0: और अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और जब आप उन्नति की बात करते हैं, अपने गांव के बारे में जो बात करते हैं, आप खुश है और आपको जो दायित्व दिया गया है आप उसको निभा रहे हैं, और सरकार का आपके दायित्व निभाने में कितना सहयोग मिलता है?
1: सर 100% सरकार के सहयोग से ही सारे काम होते हैं।
0: और कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि आपके सरपंच रहते हुए आपके गांव में कोई ऐसी जरूरत हो जो आप इस समय इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं?
1: देखिए, मेरा सबसे मेन एक ही बात है कि हर गांव के अंदर एक खेल ग्राउंड जरूर हो
0: जी।
1: क्योंकि देखिए, भारत सरकार तो इस चीज को आगे बढ़ा ही रही है, खेलो इंडिया खेलो, जानते हैं सभी लोग, पर खेलने के लिए बच्चों का प्ले ग्राउंड होना बहुत जरूरी
0: जी।
1: क्योंकि अब सभी को पता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज्यादा जा रही है। उसका कारण है कि जब उनको कोई काम ही नहीं मिलेगा तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे, नशे की तरफ जाएंगे। खेल भी एक नशा ही है। जिस इंसान को या जिस बच्चे को खेल का नशा लग गया ना, वो दूसरे नशे की तरफ कभी नहीं जाएगा। और अगर गांव में ग्राउंड होगा, शाम को बच्चे वहां खेलेंगे, मेरा मानना है कि वो गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। और खेलने से शरीर मजबूत होता है और माइंड भी फ्रेश होता है। खेल ग्राउंड बहुत जरूरी है हर गांव में।
0: तो आप चाहते हैं कि आपके गांव में कोई ऐसी जगह देखी जाए जिस पर एक खेल का मैदान बनाया जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जहां बच्चे अपना खेल का प्रदर्शन कर सके।
1: मैं प्रोसेस में लगा हुआ हूं।
0: उसके लिए क्या गांव से कोई रेजोल्यूशन आपको मिला है जो आपने राज्य सरकार को दिया है?
1: हाँ, हमारी पंचायत ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है
0: जी,
1: और मैंने उसकी डिमांड राज्य सरकार को भेज रखी है, और मुझे आशा है, तो मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी मेरे गांव में खेल ग्राउंड बनवा दे।
0: हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आके आपसे बात करते हुए। आपसे आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप अंबाला के आसपास जितने भी गांव हैं या जिन गांवों का आपने नाम लिया
1: जी,
0: उनको आप इस कार्यक्रम के माध्यम से FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: देखिए, संदेश तो मेरा सभी गाँव को एक ही है
0: जी,
1: कि सभी लोग मिलजुल के रहे, अपना अपना जीवन सभी लोग जी रहे हैं, अपना अपना जीवन जिए। जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें जो बेनिफिट्स देती है या उनकी जो विचारधारा चलती है कि यहाँ पे गांव में ये विकास होने चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए, उसको फॉलो करें तो सब कुछ अच्छा होगा।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, और हम उम्मीद करेंगे कि जब ये कार्यक्रम प्रसारित होगा आपके सारे गाँव वालों को आप ये इन्फॉर्म करेंगे। हम आपको 1 हफ्ता पहले बताएंगे ये रेडियो पर कब आएगा
1: जी,
0: और आप रेडियो सुने। हम रविवार को हरियाणवी सेगमेंट का प्रोग्राम चलाते हैं और ये प्रोग्राम भी हरियाणवी सेगमेंट में ही आएगा
1: जी।
0: और साथ में हम कृषि समाचार भी चलाते हैं, तो जब यहाँ आपके गांव के लोग इस सामुदायिक रेडियो को सुनेंगे
1: जी,
0: मुझे पूरा विश्वास है वो अपने आप को इसके साथ जुड़े पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ गांव चलें। आज हम आए हैं गांव फलेल माजरा में और हमारे साथ राज्य सरकार के पदाधिकारी, जिनमें से अमित खोसला जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट है पीएचई डिपार्टमेंट अम्बाला कैंट से, और उनकी टीम भी हमारे साथ यहां पर है। तो अब हम अमित जी से जानना चाहेंगे कि जब ये इस गांव में आते हैं और आज का जो हमारा विजिट है, इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से ये गांव को अपना साथ देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अमित जी।
2: नमस्कार, मैं अमित खोसला, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट अम्बाला से, पीएचडी डिपार्टमेंट। मेरे पास पूरा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर मेरे 6 ब्लॉक्स आते हैं
1: जी,
2: और 400 पंचायतों का ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है पूरा
1: जी,
2: जिसमें 6 ब्लॉकों में नारायणगढ़, शिरादपुर, अम्बाला 1, अम्बाला 2, साहा और बराड़ा शामिल हैं। इन 6 ब्लॉकों में हमारे पास पानी की कोई समस्या नहीं है
1: जी।
2: हमारे पास अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सफिशेंट पानी, जिसे कहते हैं, और भरपूर पानी वाला जिला है हमारा, जिसमें हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, और मीठा पानी जरूर कहा जाता है हमारे इस क्षेत्र के पानी को
1: जी।
2: तो हमारी जो सप्लाई है वो ट्यूबवेल बेस्ड है सारी। शहरों में हमने कैनाल बेस भी कर रखा है और ट्यूबवेल बेस भी कर रखा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वो सारा ट्यूबवेल बेस्ड है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी धरती का पानी हमें मिल रहा है अम्बाला की धरती से
1: जी,
2: वो साफ है और मीठा पानी हमें मिलता है। हम लोग पूरे गांव के अंदर जो सप्लाई देते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी एंड घर तक पानी ऐसा ना हो कि वो बीच में रह जाए, उसको ना मिले। तो जब सप्लाई चलती है, सप्लाई की टाइमिंग्स रखे हुए हैं, प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर पंप ऑपरेटर अपना ट्यूबवेल चलाता है, साथ में डोजर चलाता है
1: जी।
2: डोजर क्या होता है कि एक हमारा कंपोनेंट है जिसके अंदर ब्लीचिंग डालकर लोगों तक पहुंचाया जाता है कि अगर बीच में कोई भी बैक्टीरिया किसी कारण से
1: वो कोई किसी के सेहत पर कोई असर
2: ना पड़े, वो बीच में ही उसको मार दे, तो हम वो डोजर के साथ पानी की सप्लाई देते हैं। अब उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे हम एक बार, हमारी ओटी किट होती है, वहां से जब ट्यूबवेल स्टार्ट होता है वहां से एक बार चेक करते हैं, एक बीच वाले घर से लेते हैं और एक आखिरी घर से लेते हैं सैंपल, ताकि हमें पता लग पाए कि हमारी जो सप्लाई में ब्लीचिंग चल रही है या नहीं चल रही। अगर हमें कहीं भी त्रुटि पाई जाती है तो हम उसी समय उसको चेक करवाते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे पानी की व्यवस्था गड़बड़ गई
1: जी,
2: हमारे पास कोई समस्या आती है कि हमारे पास पानी नहीं आ रहा है, तो तुरंत हम उसके ऊपर कार्रवाई रख के हमारे जो प्लम्बर्स हैं, फिटर्स हैं, वो वहां पर जाते हैं और
1: समस्या का
2: समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं
1: जी।
2: मान लीजिए अगर कहीं लाइन टूट गई है, क्योंकि कई बार प्रेशर से या किसी बड़े वाहन की वजह से लाइन टूट जाती है, तो लीकेज होना आम बात है
1: जी।
2: तो लीकेज को उसी समय ठीक किया जाता है, और मान लीजिए कोई बड़ी डैमेज हो गई है तो पाइपलाइन उसी समय बदलने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। अब बीच में कई लोगों ने अपने कनेक्शन जो है वो नालियों में से ले रखे होते हैं
1: जी,
2: या किसी कारण से वो नाली के संपर्क में कनेक्शन आ जाता है, तो कई बार क्या होता है कि नाली से कनेक्शन होने से वो जो पाइप है वो गलती है
1: और गंदा पानी जाने का खतरा रहता है,
2: या वहां पर कोई ना कोई ज्वाइंट होता है जिसकी वजह से वो पानी उसके अंदर रिसाव करके अंदर चला जाता है
1: जी।
2: दूसरा कारण क्या होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि हमारा जो लैट्रिन वाला हिस्सा है, जहां पर जाते हैं बाथरूम जाते
1: जी,
2: हैं
1: सेप्टिक टैंक जहां पर होता है,
2: तो वो क्या करते हैं उसको साफ करने के लिए जो मेन पाइप है हमारी, जहां से पानी की सप्लाई आ रही है, वहां पर वो पाइप लगा के उसमें छोड़ देते हैं कि शायद ये टैंक साफ हो जाएगा या हमारा ये जो सीट है वो साफ हो जाएगी
1: जी।
2: लेकिन कई बार क्या होता है कि वो करते इसलिए कि साफ हो जाए, साफ होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन बाई चांस वो अगर नीचे गिरती है तो जब हमारा ट्यूबवेल बंद होगा और पानी जो है सक होगा पीछे, वो लाइनों के अंदर चला जाएगा
1: जी।
2: फिर हमारी पाइपलाइन में जब हमारी दोबारा से सप्लाई शुरू होगी

0: करने के पीछे मसला ये है कि हमारी लाइन जो है प्रेशर के साथ पानी आगे पहुंच जाती है
1: जी।
0: अब मान लीजिए 10-15 घरों की टूटी खुली हुई है, यूज वो कर नहीं रहा है, वेस्ट वो कर रहा है, नाली में बह रहा है, तो लास्ट घर में वो पानी नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं हम उस इंसान के साथ या उस घर वाले के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं कि हम उसको पानी, उसकी जो हिस्से का पानी है वो हमने उसको बीच में ही रोक लिया।
1: अमित जी, इस समय हम गांव फलेल माजरा में हैं और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका शीर्षक है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। उसके अंतर्गत आपके मार्गदर्शन में हम आज इस गांव में आए हैं, हमने सरपंच जी से बात की। तो जब ऐसी समस्या आती है, क्या आप गांव के जो सरपंच होते हैं या गांव के जो पदाधिकारी है, क्या आप उनका सहारा, उनका सपोर्ट भी लेते हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए?
0: अगर मैं गांव की बात करूं, जो गांव का मुखिया है वो सरपंच है
1: जी।
0: हम किसी भी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, अगर उसने गांव में एंटर करना है तो सरपंच को पहले इंटीमेट करता है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है
1: जी।
0: कि हमें ये समस्या सुनने को मिली है या हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो सरपंच क्योंकि वहाँ का मौजिज आदमी है
1: जी,
0: उसके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरे गांव में किस जगह पे क्या काम होना चाहिए या किस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है या ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है या नहीं आई है। जब उसको ये चीज़ें पता होती हैं और हम उनसे मिलते हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, मतलब कि वो एंट्री पास है हमारे लिए। इसके साथ साथ हमारी VWSC भी है
1: जी।
0: VWSC है, विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी
1: जी।
0: ये जो कमेटी के मुखिया जो हैं वो सरपंच हैं
1: जी,
0: बाकी फिर पंच आते हैं
1: जी।
0: और इसमें 50% हमने भागीदारी रखी है महिलाओं की,
1: ठीक है,
0: आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और महिला पंच, चौकीदार, तो पंप ऑपरेटर, हमारा पब्लिक हेल्थ का जेई, एक पंचायती राज का जेई, तो ये मिलके एक कमेटी बनती है जिसे VWSC का हम नाम देते हैं। अब इनके साथ हमारा मिलना अक्सर होता है और इनसे हमारी बातचीत होती है कि आपके गांव में पानी को लेकर क्या समस्या है या क्या सुझाव देना चाहते हैं या किस तरीके से इसको ठीक करना चाहते हैं। अब मान लीजिए पीछे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन देता है या हमें कोई बताता है कि हमारे गांव में पानी की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम उसको मतलब सुलझाने के लिए गांव में आते हैं, उसका मुआयना करते हैं,
1: कमेटी के साथ
0: देखते हैं। तो कई बार हो सकता है कि किसी ने अपनी टूटियां मतलब अनजाने में ही खोल रखी हैं या किसी ने अपने बाड़े में ही कनेक्शन लगा रखा है, बाड़े में अपनी उसने छोटी मोटी सब्जी सी लगा रखी है, उसमें लगातार पानी बह रहा है और वो पानी बिना किसी कारण से वो वेस्ट कर रहा है, तो उसको समझाकर उस कनेक्शन को बंद कर देते हैं। फिर वो समझ भी जाता है, क्यों, उसमें हमारे साथ सपोर्टिंग गांव के जो मौजिस लोग हैं, सरपंच हैं, वो हमारे साथ चलते हैं।
1: आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो भारत सरकार का जल जीवन मिशन है,
0: हाँ जी,
1: वो भी आपके साथ जुड़ा है, तो क्या ये माना जाए कि जितने भी गांव को आप देखते हैं, जितने कमिटीज को आपने बात अभी की जिनको आप देखते हैं, क्या लगभग हर जगह पर पानी की जो व्यवस्था है वो अच्छे से है और गांव में जो पानी का इस्तेमाल है क्या वो प्रॉपरली होता है, क्या इस पर भी आप उस कमेटी के साथ बात करके उसका ध्यान रखवाते हैं?
0: बिल्कुल रखवाते हैं। हमारे जो हर घर नल से जल 2019 में ही कंप्लीट कर लिया गया था
1: जी,
0: और हमारे राज्य का ये पहला पंचकूला और अंबाला एक ही दिन घोषित किए गए थे 100% हर घर नल से जल रूरल एरिया में
1: जी,
0: तो उसका श्रेय भी हमें जाता है कि हमने वो काम किया और श्रेय भी जाता है उनको, ग्रामीण लोगों को जिन्होंने हमारा साथ दिया
1: जी।
0: तो हमारे जिस भी एरिया के अंदर जो मेरे अंडर आता है अंबाला के अंदर, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर पाइपलाइन से सप्लाई ना हो रही,
1: नल से जल ना आता हो।
0: हर जगह आता है, टाइमिंग पे आता है और टाइमली वो पानी यूज करते हैं और हमारा पानी भी साफ मिलता है उन्हें। और हम ये भी कहते हैं कि आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो पानी अंबाला का है उसमें आरओ की अभी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत साफ है, आप इसको डायरेक्टली बॉयल करके भी पी सकते हैं।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, आप जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता जिसको अंबाला में सुना जाता है, आप सभी श्रोताओं का और खास करके जो ग्रामीण हमारे जो लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे पानी के संरक्षण में, पानी के इस्तेमाल में, और अगर आप पर्सनल हाइजीन के बारे में भी कह सकते हैं तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि पानी की जो मात्रा है हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है जो बहुत लिमिटेड है
1: जी।

0: हमें ये मिल रहा है, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हम अम्बाला जैसे शहर में रह रहे हैं और इस एरिया में पानी जो मीठा है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो वाटर लेवल है नीचे जाता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इससे वंचित हो जाएं। तो आप से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप अपना इस्तेमाल करें, पानी ज़रूर करें इस्तेमाल, लेकिन उसको बंद कर दें, उसको नालियों में ना बहाएं या उसको वेस्ट ना करें। जितना अपनी ज़रूरत है आप उसको यूज़ कीजिए और उसको बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है पानी से रिलेटेड तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-5678। ये हमारा जो टोल फ्री नंबर है
1: 1800-180-5678।
0: हाँ जी
1: जी,
0: ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप 24x7 कंप्लेन कीजिए। आपके एरिया का जो कंसर्न जेई और एसडीओ है, आपके ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि ये कंसर्न एरिया का
1: कौन इंचार्ज है और वो उस काम को देख लेगा,
0: देखता है, और ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है उस एरिया के एसडीओ और जेई के पास भी चला जाता है कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। तो ये दोनों तरफ हमारी चीज चलती है कि दोनों को पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम हमने रिसॉल्व करनी है।
1: आपसे अनुरोध करूंगा कि नंबर एक बार आप फिर बताएं।
0: 1800-180-5678
1: 1800-180-5678। श्रोताओं, आप सभी को हम रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz की ओर से भी ये कहना चाहते हैं कि पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, और अगर हम इस पानी को सही से इस्तेमाल नहीं करें, अगर हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल ना करें, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी का सोचना नामुमकिन है। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बात की और इस गांव की जो और जो आपकी जिम्मेदारी है उनके बारे में आपने बात की, और जो संदेश आपने दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संदेश हमारे सभी अम्बाला वासियों तक, हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगा। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन हम सबके लिए अच्छे होंगे। जब गांव उन्नत होगा तो हमारा देश भी उन्नत होगा, और सर्वोपरि हमारा देश है, जब देश है तो हम हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ गाँव चले एपिसोड 12 जो आधारित था गाँव फलेल माजरा अम्बाला पर। पीएचई विभाग के टीम के अमित खोसला सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम एडिट निर्देशित एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

पिट्टिया गज भर की चुट्टिया, न कर गुस्सा मेरी गुड़िया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू,

वास्ते हंसने के वास्ते न रोना तू मेरी नीता ओ तुझको घुमाऊंगा दुनिया दिखाऊंगा

0: हंस दे जरा ओ छोरी जरा हंस दे तू हंस दे।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। धान में ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला से बचाव के लिए समय पर करें निगरानी। लक्षण दिखते ही दवा का छिड़काव, संतुलित सिंचाई रखें। धान की पत्तियों पर बदरा यानी ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला जैसी बीमारियों एवं कीड़ों का आक्रमण हो सकता है। ऐसे में किसानों को सजग रहना चाहिए और समय पर खेतों का निरीक्षण कर बचाव के प्रबंध करने होंगे। HAU के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि बदरा यानी ब्लास्ट बीमारी के लक्षण नजर आते ही प्रति एकड़ 300 मिलीलीटर आइसोप्रोथिलियन 40% EC या 200 ग्राम कार्बोनडाइजिम 50 WP के घोल का छिड़काव करें। पानी की मात्रा 200 लीटर रखें। दूसरे छिड़काव 50% बलियां निकालने पर करें। बलियां निकालते समय खेत में सूखा ना लगने दें। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवागुण पत्ती अंगमारी जिन खेतों में आ जाए उनमें पानी लगातार ना खड़ा रहने दें और ना ही उस खेत का पानी दूसरे खेत में जाने दें। ऐसे खेतों में नाइट्रोजन खाद बाद में डालें। खेत में खरपतवार को ना पनपने दें, छिड़काव जरूरी। धान की फसल में पानी की कमी ना होने दें। सिंचाई 5 से 6 सेंटीमीटर से अधिक गहरी ना करें। खेत में खरपतवारों को कभी ना पनपने दें। सफेद पीट वाला व भूरा तेला पौधे के तने के साथ लगा रहता है। 120 ग्राम पाइमोट्रोजिन 50% WUG चेस 50% WUG या 80 ग्राम डाइनोटीफ्रॉन 20 AG ओशीन 20 AG को 200 लीटर पानी से मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। रोपाई के 3 से 6 माह बाद डालें नाइट्रोजन। HAU ने किसानों को सलाह दी है कि धान में यूरिया का प्रयोग फॉस्फोरस के स्तोत्र के अनुसार करें। यदि फॉस्फोरस की प्रति DAP से की गई है तो किस्म के अनुसार 42 से 110 किलोग्राम और SSP से की गई है तो 52 से 130 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया डालें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा पहले देने के बाद शेष 2 बराबर भागों में रुपाई के 3 और 6 सप्ताह बाद डालें। शीत ब्लाइट पर 15 दिन में छिड़काव करें। HAU ने किसानों को सलाह दी है कि शीत ब्लाइट बीमारी से बचाव के लिए खेत और मेंढों पर दूब व अन्य घास ना उगने दें। बीमारी के लक्षण दिखते ही अनुचित फफूंदनाशी का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव भी करें ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। सीधी बिजाई वाली किस्मों में डालें यूरिया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र चंद्र के अनुसार सीधी बिजाई बासमती धान की लंबे कद की किस्मों के लिए 55 किलोग्राम यूरिया और छोटे कद की किस्मों के लिए 90 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की मात्रा लंबे कद की किस्मों में बुवाई के 2 एवं 7 सप्ताह बाद डालें, जबकि छोटे कद की किस्मों में 3 और 6 एवं 8 या 9 सप्ताह बाद डालें। बत्तर व सूखी अवस्था वाले खेतों में सिंचाई मौसम अनुसार सप्ताह के अंतराल में करें। जैविक खेती को बढ़ावा। वर्मी कंपोस्ट पर मिलेगी 80% सब्सिडी। सीजन में 2 बार खुलेगा पोर्टल, रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही मिलेगा लाभ। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने, इससे जुड़े किसानों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को जैविक खाद
वर्मी कंपोस्ट पर 80% सब्सिडी देने की योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बचाना है। योजना के अनुसार यह सब्सिडी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत जैविक उर्वरकों पर ही जारी की जाएगी। कृषि उप निर्देशकों के लिए जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा टिकाऊ तंत्र विकसित करना है जिसमें किसान सुरक्षित स्वस्थ और अवशेष मुक्ति कृषि उत्पादकों का उत्पादन कर सके। कृषि विभाग के महानिदेशक ने सभी जिलों के उप निर्देशकों को इन दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान जागरूक होकर इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर जैविक खेती की ओर रुख करें। ऐसे करें आवेदन। पंजीकरण अनिवार्य। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है। ऑनलाइन प्रोसेस। किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के अनुसार किसान का सारा विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से संबद्ध ही ले लिया जाएगा। अनुभव की जानकारी। आवेदन करते समय किसानों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे पहले से जैविक खेती कर रहे हैं या इस क्षेत्र में नए हैं। जैविक खेती का दायरा बढ़ाना। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो और मिट्टी की सेहत सुधरे। जैविक खेती से खेत की मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाना है। कृषि अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा और किसानों का खर्च घटेगा। उपभोक्ताओं तक रसायनों से मुक्त स्वस्थवर्धक कृषि उत्पाद पहुंच सकेगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होंगे आवेदन। कृषि विभाग के APPO डॉक्टर सतीश ने बताया कि जो किसान जैविक खाद पर सब्सिडी चाहते हैं उन्हें विभाग द्वारा जारी पोर्टल पर योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग समय सीमा तय की है। खरीफ फसलों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक होगी। रबी फसलों के लिए आवेदन की 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जा सकती है। किसान को तय सरकारी दुकानों से प्रोडक्ट खरीदने होंगे। इसके बिल अपलोड करने के लिए सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

बहनों भाइयों, 50 के दशक में गायकी की दुनिया में एक खूबसूरत नाम ने जन्म लिया। शानदार जानदार भारतीय गायिका के तौर पर सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो लगभग सभी संगीतकारों के चेहरों पे इत्मीनान के साथ साथ खुशी की लहर दौड़ गई।

0: लता मंगेशकर की आवाज से मिलती जुलती आवाज सुमन कल्याणपुर ने सन 1956 में फिल्म मंगू के नाम से अपने करियर की शुरुआत की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी सन 1937 को ढाका अब बांग्लादेश में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने सन 1958 में रामानंद कल्याणपुर से शादी की। आपने अपनी गायकी की शुरुआत कर सन 1960 और सन 1970 के दशक में एक लोकप्रिय गायिका के तौर पे अपने आप को साबित किया।
1: पुकारा हम चले आए।

उनकी आवाज लता मंगेशकर जैसी होने की वजह से कई ऐसे मौके भी आए कि संगीतकारों ने उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पे उनकी आवाज का इस्तेमाल किया।

एक ऐसा मौका आया था जब सुमन कल्याणपुर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की रिहर्सल की थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान उनसे ये गीत ले लिया गया था, जिसका मलाल सुमन कल्याणपुर को सारी जिंदगी रहा।

0: सुमन कलानपुर को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायकों में से एक माना जाता है।
1: तो

उन्होंने सन 1960 के दशक में मोहम्मद रफी के साथ 140 से ज्यादा दुकानें गाए। सुमन कल्याणपुर की

जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था और लता ने रफी के साथ गाने से इनकार किया था, तब मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरनी और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद किरनी। आज एक ऐसा एपिसोड है जो आपकी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की, यानी टेक्नोलॉजी से थोड़ा ब्रेक लेने की। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनके बिना आज जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी हमें आज़ाद बना रही है या एक इनविजिबल केज में बंद कर रही है? चलिए इसके बारे में गहराई से समझते हैं।

टेक्नोलॉजी और एडिक्शन। हर दिन एक इंसान 3 से 4 घंटे फोन स्क्रीन पर बिताता है। नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया, बिना फोन के रहने का डर। डोपामाइन इफेक्ट, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को एडिक्टेड बना देती है। कंपैरिजन कल्चर, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से असंतुष्ट रहना। डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है? मेंटल हेल्थ का असर, ज्यादा स्क्रीन टाइम एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट, फोकस और कंसंट्रेशन कम होता है। रियल लाइफ कनेक्शन खत्म होते हैं, फैमिली और फ्रेंड से वक्त कम हो जाता है। सोल्यूशन, डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स, बेडरूम और डाइनिंग टेबल पर फोन का यूज ना करें। अनप्लग संडेज, एक दिन सोशल मीडिया से ब्रेक लें और रियल लाइफ इंटरेक्शंस का मजा लें। स्क्रीन टाइम लिमिट, हर ऐप के लिए फिक्स्ड टाइम सेट करें। आउटडोर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज में समय बिताइए, जैसे वॉकिंग, रीडिंग या मेडिटेशन। डिजिटल एडिक्शन के लक्षण, अगर आप बिना फोन के बेचैन महसूस करते हैं या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहते हैं तो ये डिजिटल एडिक्शन के संकेत हो सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के फायदे, इससे आपकी नींद बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है और आप अपने आसपास के लोगों से बेहतर संबंध बना पाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? छोटे ब्रेक्स लीजिए, रोजाना कुछ घंटे बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताइए। नोटिफिकेशन बंद करें, सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन ही ऑन रखिए। हॉबीज में समय बिताइए, पढ़ाई लिखाई या किसी नए हॉबी में अपना समय व्यतीत करें। कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग जरूरी है, लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। कभी एक दिन बिना फोन के गुजारिए और देखिए आपको कितनी नई चीजें महसूस होंगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी डिजिटल जिंदगी का समझदारी से उपयोग करें। इसके साथ ही आपसे लेती हूँ विदा, अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्कार।

आदाब, नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे, मैंने तकिए पे तेरा नाम

मेरी उंगली पकड़ता, मुझे अपने साथ ले जाता पत्थरों के शहर में, जहां बरसों पहले मैंने तराशे थे। बोलते मुजस्सम और पत्थरों के खुदा, जिनकी इबादत में हर कोई है मसरूफ, और उठते ही सदा दुआओं में हाथ।

स्ट्रीट मेरी माजी के वो पल जिसमें मैं मिट्टी के खिलौनों से खेलता था, दौड़ता था, भागता था, हंसता था, पेड़ों की टहनियों से झूला झूलता था। बारिश की बूंदों को अपनी कच्ची मुट्ठी में कैद करता था। सिर्फ एक बार लौटा दे मुझे मेरा बचपन, जो गलतियां हुई अब उनको न दोहराऊंगा, किसी से न रूठ जाऊंगा, किसी को न रूठने दूंगा, किसी से न शिकवा करूंगा और न किसी को शिकायत का मौका दूंगा, मगर मुझे लौटा दो मेरा बचपन, तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में

किसकी सूरत अब इस शीशे में उतारूं। टूट गया आईना, टुकड़े टुकड़े हो गया, जुबां बंद हो गई।

खामोश, चारों ओर पसरा है सन्नाटा। शायद फरामोश करना तुम्हारी आदत है, यूं ही पल पल हर पल मिटते रहे बेवजह।

भीगती बरसातों में तुम भीगते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, दूर से ही सही तुम्हें निहारता रहूं। चांद भी इन बादलों से चीर के निकल आया है तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। गरजते बरसते ये बादल ये हवाएं तुम्हारे गेसों तुम्हारे रुखसार को छूने में है मुंतजर। चले आओ अपनी मुस्कुराहटों के संग, यहां खेले लुक्का छुपी और मुस्कुराए इन फिजाओं के साथ साथ।

हम तो मुसाफिर ही मंजिल की तलाश में भटकते हैं, जानते ही रास्ते दुश्वार हैं, कठिन हैं राहें, फिर भी सफर है जारी। पीड़ाओं के सहरा में कितनी जिंदगियां भटकती हैं समझना बड़ा मुश्किल है, पर समय की रफ्तार के साथ शायद इस भटके हुए मुसाफिर की तलाश खत्म हो, ताकि एक नई सुबह का आगाज हो सके।

के इस मौसम में कुछ अनकहे सवालात, कुछ अनसुनी बातें रह गई पीछे, शायद ये सोचकर कि हम हदे परवास को छूने की नाकाम कोशिश करते रहे, करते रहे अपनी तमन्नाओं, अपनी आरज़ुओं का बेसब्री से इंतजार, बुलंदियों में अपनी परवाज़ लिए अपने आसमां को तलाशने की कोशिश।

आशाओं और उमंगों के साथ हम अपनी परवाज लिए आपके दिलों को छूने की जुरत तो जरूर करेंगे, पर धीरे धीरे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिलों में बसती है धड़कने और धड़कने आपकी याद दिलाती है।

और मैं चलता रहा उस मोड़ तक जहां तुम मुझे तन्हा छोड़ आए थे। गर्चे ये सफर आज भी मुझे मेरे हर उस बीते लम्हे को भुलाने का हौसला देता है, मगर तुम्हारी मासूम बेबस अदाओं का एहसास कैसे भुला पाऊंगा, जबकि हमारे रिश्ते अब पिंजरों में कैद हैं। फिर भी उन रिश्तों की खुशबू हमारे दरमियान के फासलों को कम करने में हमेशा मदद करती आ रही है।

0: दोस्तों, आज का मिली जुली गीतों का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये सफ़र आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 7। आज के मेहमान स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्रीमती रेनू मेहता जी। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर भी कहते हैं। उन्होंने जन्म ही लीलाओं के साथ लिया था। भगवान कृष्ण का बचपन विभिन्न कथाओं से भरा है। सभी के घरों से माखन चुराते थे, गोपियों के स्नान करते समय कपड़े चुरा लेते थे। उन्होंने मामा कंस के बेजे सभी राक्षसों को मार डाला। भगवान कृष्ण को उनकी पालक मां यशोदा ने बहुत प्यार और देखभाल के साथ पाला था। जय श्री कृष्ण। आज मैं भगवान श्री कृष्ण माय हुआ हूं, क्योंकि आज के कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 7 में आज के आमंत्रित मेहमान हर सांस के साथ राधे राधे बोलते बोलते भगवान श्री कृष्ण के साथ मगन रहती हैं। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी करता हूं रूबरू आज के ऐसे व्यक्तित्व से जो भगवान श्री कृष्ण को अपने भजनों में याद करती हैं और सभी को कृष्णमय करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं दिल्ली से आए श्रीमती रेणु मेहता जी का। रेणु जी, आपका स्वागत अभिनंदन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता के इस स्टूडियो में।
1: राधे राधे जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का आज मौका दिया।
0: रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस साक्षात्कार में हैं। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दे और जय श्री कृष्णा आपके जीवन के लिए क्या आधार है?
1: मेरे जीवन का आधार राधे राधे जय श्री कृष्णा ही है, क्योंकि बचपन से ही हमें इन्हीं संस्कारों में ही हम पले हैं और उसी में बड़े हुए हैं और वही संस्कार हमारे अंदर हैं। कृष्ण के बिना, राधा के बिना मेरा जीवन जीवन नहीं है। इन्हीं के साथ ही मेरी सुबह होती है, इन्हीं के साथ ही मेरी रात होती है। तो ये जीवन में नहीं है तो मुझे लगता है कि एक दिन भी मैं अगर बीमार पड़ जाती हूँ, मैं पूजा नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है आज कुछ मिस हो गया है, कुछ कमी महसूस होती है। ऐसे ही मैं हर मंथ मेरे को राधा रानी वृंदावन बुलाती है, तो अगर मैं कई बार स्किप हो जाता है, बीच में गृहस्थ में हैं हम, गृहस्थ में रह के बहुत सारे काम होते हैं, कई बार नहीं जा पाते, तो अगर एक महीने में मैं एक बार नहीं जाती तो मुझे खाना खाना है ना, जो पछता नहीं है कि मैं गई नहीं हूँ। तो मेरे साथ ये पिछले 26-27 सालों से है ऐसा। हम बचपन से ही इस पूजा में रहे हैं, राधा रानी के भगत रहे हैं। मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी दादी माँ, ये सारे शुरू से ठाकुर जी को भोग लगाते थे, तब जाके अपने अंदर कुछ अन्न ग्रहण करते थे। तो वही संस्कार हमारे अंदर भी हैं। उसी ही संस्कारों को लेके मैं आज तक यहाँ पहुँची हूँ और आगे भी मैं चाहती हूँ मेरा जीवन इसी लम्हों में ही गुजरे और ऐसे ही भक्ति भावना में मैं अपने साथ सबको जोड़ूं और सबको राधे राधे बोलने का संदेश दूं कि राधे राधे बोलो और सदा कृष्णमय के हो जाओ और कृष्ण के चरणों में रहो। कहते हैं कि अगर राधे राधे बोलेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, अगर हम कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे।
0: अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जितना हम रेणु जी आपको जानते हैं, आप जहां भी जाते हैं आपकी एक पूरी मंडली होती है
1: जी,
0: तो आज भी आपके साथ पूरी मंडली है हमारे श्रोताओं को लेके। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन सा आप कृष्ण भजन हमें सुनाना चाहेंगे सबसे पहले, फिर हम इस बातचीत को जारी रखेंगे।
1: जी जरूर, मेरे दिल के बहुत एक प्यारा सा भजन, मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, मतलब सुबह भी ये गुनगुनाती हूँ, अगर मुझे कहीं मौका मिलता है तो तब भी मैं ये गाती हूँ। ये भजन सभी को आता है, सभी गाते हैं और मुझे बहुत प्रिय है ये भजन।

0: जय श्री कृष्ण,
1: राधे राधे,
0: राधे राधे, जय श्री कृष्ण,
1: जय श्री राधे।
0: आपने कहा कि राधे राधे बोलेंगे तो
1: कृष्ण चले आएंगे, कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण कभी नहीं आएंगे।
0: तो आज के बाद हम बोलेंगे राधे राधे, जय श्री कृष्ण
1: जी।
0: आओ हरि हमारी अंगना। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये स्टूडियो है, ये हमारे लिए एक मंदिर है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस अंगने में आए और हमें आशीर्वाद दे, जैसे आपने हमारे श्रोताओं को आज अपने मंत्रमुग्ध आवाज के साथ जोड़ा है। हम इस बातचीत को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे आपने अभी घर की बात की, तो क्या बचपन से ही घर में ऐसा माहौल था? किस तरीके का माहौल था, कृपया विस्तार में बताएं।
1: हाँ जी, मेरे घर का माहौल दादी के टाइम से ही इतना अच्छा और भक्ति भावना वाला था कि मेरी दादी सुबह, वो सरदारनी थी, मगर वो गुरुद्वारे सवेरे 4:30-5 बजे जरूर जाया करती थी। तो मैं 5वीं कक्षा में थी, तो धीरे धीरे मेरा भी मन करा कि मैं दादी के साथ जाया करूं। हालांकि मुझे मम्मी मेरे गुस्सा करते थे, तू पढ़ाई करनी है, अभी से तेरे को ये लगन लग रही है, मैंने बड़ी मार खाई है मंदिर जाने में। और मेरी मदर बहुत मारती थी कि तूने पढ़ना है, फिर भी मैंने बहुत टॉप करा। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए करी मैंने, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही। बट मेरा जो 5वीं कक्षा से ही जो मन था ना, अंदर का दिमाग या मन कुछ भी कह लो, मेरा तन मन धन जो कहते हैं, बंदा कहता है हमने अर्पण कर दिया, मैंने शायद 5वीं कक्षा में ही अपने आप को इस लाइन में जोड़ लिया था। हमारे घर के पीछे एक मंदिर हुआ करता था, वहाँ चंचल जी की भेंटें सुबह सुबह लगती थी 5 बजे। तब हमारे टाइम पे चंचल जी ही थे, हम बचपन में थे तो उस टाइम जो चंचल जी की भेंटें लग जाती थी मंदिर में 4-4:30 बजे के आसपास, तो उसके बाद मैं सो नहीं पाती थी, मैं उठ जाती थी। मैं मंदिर जाया करती थी, 5 बजे निकल जाना, मंदिर की सफाई करनी, वहाँ भेंटें गानी और सुनना भी, सुबह सुबह माता जी भी आरती वहाँ मंदिर में करती थी। तो फिर मेरी मदर भी अपना ठाकुर जी को मानती थी, मेरे फादर बहुत भक्ति भावना वाले हैं, वो भी जब तक अपना दिनचर्या शुरू नहीं करते भक्ति से, तो उनको भी लगता है मैंने कुछ मिस कर रहा है। हाँ, तो ये सब संस्कार बोलने से या कहने से या करवाने से कभी नहीं आएंगे जब तक आपके घर से नहीं मिलेंगे आपको।
0: रेणु जी, मैं यहाँ पर एक बात ये आपसे पूछना चाहूंगा, और ये चाहूंगा भी आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं, वो किस तरीके से अपनी श्रद्धा, वो किस तरीके से अपने मन को उस भक्ति में लगाएं।
1: मन को समझाना अपने बस में है। अगर मैं आपको कहूं कि ऐसे करो या आप ऐसे करो, तो आप शायद एक मिनट के लिए सुन लोगे, मगर आपका मन कहेगा नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। मन को समझाना अपने हाथ में है, और जब तक हम अपने मन को अपने आप नहीं समझाते, सही दिशा और गलत दिशा का
0: अंतर
1: नहीं पता लगता, तब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो। सही डायरेक्शन देने वाले मेरे माँ बाप थे, मेरी दादी थी, तो उन्होंने बचपन में ही कहा था कि जितने मर्जी रिश्ते हों, जितने मर्जी तुम कहीं भी चले जाओ, भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें ये जो जीवन मिला है, सिर्फ तुम्हारी जो जीवन आपको भगवान ने दिया है, ये कर्म के लिए दिया है। कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, वही हमारे आगे आएंगे, और कर्म ही प्रधान है, और कर्म करने ही हम यहाँ आए हैं, और कुछ ना साथ लेके जाएंगे ना लेके आए थे। तो कर्म ही हमने बहुत अच्छा करना है, जिसकी वजह से हमें दुनिया भी जाने, हमारे अपने बच्चों का भी आने वाला टाइम सवरे, और हमारा अपना भी जो मरने के बाद टाइम है वो भी सवरे, ताकि हम भगवान से चरणों में, भगवान के चरणों में लग के हम मुक्ति प्राप्त करें। हमें कोई ऐसा वैसा जीवन नहीं मिले जिसमें हम भटके, भगवान में शरण में जाएं, उनके चरणों में जाएं। तो ये चीजें बचपन में ही थी मन में, तो इसी को मैंने अपनी लाइन बनाया। ऐसा नहीं मैंने नौकरी भी करी, मैंने स्ट्रगल देखा, मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला, कैसे बड़ा किया, सब होता है लाइफ में
0: जी,
1: बट मैंने इस

0: रेनू जी, हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आप किसी संस्था के साथ भी जुड़े हैं? अगर हाँ तो किस तरीके का कार्य आप लोग मिलके करते हैं?
1: हाँ जी, मैं जरूर जुड़ी हुई हूँ। एक संस्था के साथ नहीं, मैं 3-4 संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसमें कि जो भी मैं कीर्तन करके अर्न करती हूँ उस पैसे को मैं उन संस्थाओं में लगाती हूँ। और ये नहीं कि मैं कभी भी आज तक कहीं भी कोई दान करा है तो मैंने कभी फेसबुक पे शो नहीं करा है
0: जी।
1: ना ही किसी को आगे लाके उसके लिए शो कराए ताकि किसी को बुरा नहीं लगे।
0: एक तरीके का
1: गुप्त दान है और वो हमारे पास सारा मेंशन है।
0: ठीक है।
1: तो मैं 3-4 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। एक तो अंध विद्यालय है, वहाँ हमें सेवा करते हैं हम लोग इसी धन से जो हम धन एकत्रित करते हैं सत्संग करके।
0: ठीक है।
1: और दूसरा है, एक बेटियों की शादी होती है वहाँ पे, जो सामूहिक शादी होती है वहाँ पे। मैं अभी तक 5 कन्याओं का कन्यादान कर चुकी हूँ। मेरी अपनी बेटी नहीं है, बट 5 कन्याओं का मैंने कन्यादान करा है, वो अपने पास से करा है मैंने।
0: ठीक है।
1: और उसके बाद एक हमारा NGO है ग्रेटर क्लास में, तो उसके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और एक वृंदावन में है, वृंदावन में हम अपना ठाकुर जी का जो मंदिर है, मेन मंदिर जहाँ पूरी विश्व जाता है, उसके ही पीछे एक संस्था है जहाँ पे विधवाओं का आश्रम है, वहाँ पे भी हम करते हैं।
0: उस बात पर भी हम आएंगे। जैसे आपने कहा कि आप जिन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं
1: जी,
0: आप उनके साथ कन्याओं की शादी करते हैं
1: जी।
0: समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमें हमारी हेल्प, हमारी साथ की जरूरत होती है
1: जी।
0: तो जब आप ये सारे कार्य करते हैं
1: जी,
0: तो कितनी संतुष्टि आपको मिलती है और किस तरीके से लोग प्रेरित होते
1: हैं? इससे बड़ी संतुष्टि नहीं है
0: जी।
1: ना खाने में है, ना कपड़ा पहनने में है
0: जी।
1: और ना ही लग्जरी लाइफ जीने में है
0: जी।
1: ये जो संतुष्टि है, ये आत्मिक संतुष्टि है जो हमें और प्रभु के निकट ले जाती है।
0: एक तरीके का प्रार्थना ही है ये,
1: प्रार्थना है, शुद्ध मन से प्रार्थना है
0: जी।
1: क्योंकि ये ही हमें प्रभु के निकट और लेके जाती है। और इस धन को पहले दिन से ही, जब मैंने कीर्तन करने स्टार्ट करे थे, तो मेरे फादर ने बोला था कि हम इस पैसे को नहीं खा सकते हैं और तुमने भी पूरी जिंदगी में ये पैसे को अपने घर में यूज नहीं करना।
0: अच्छा।
1: उन्होंने मेरे सीधे हाथ में गंगा जल दे के मुझे शपथ ली थी मेरे से कि इस पैसे को तुमने नहीं खाना, तुम जितना बांटोगी, जितना सेवा करोगी, तुम्हारे पे और आएगा। तो वो बात सच है, मेरे पास कभी कुछ भी नहीं था, बट जैसे जैसे मैं मेहनत करती गई, जैसे जैसे मैं जुड़ती रही, मेरी ठाकुर जी ने कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ी कि जो ना पूरी करी हो। मेरी राधा रानी का हाथ मेरे सिर पे है, मैंने बोला ना, साक्षात होता है मुझे कभी कभी। और मैं यही लोगों को भी कहती हूँ कि अपने मन को शुद्ध रखो, दिखावा नहीं करो। बस दिखावे में कुछ नहीं है, मन को शुद्ध रखना, प्रभु के साथ जुड़ना, अधीनों की सेवा करना। भले ही अधीन हम सेवा कर दी है, वो क्या करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
0: हमने
1: अपनी तरफ से उसकी सेवा करी है। अब देखो, आप कभी वृंदावन के आश्रम में जाओ, जिन बच्चों ने अपनी माओ को निकाल दिया है, जिन्होंने अपने घर के बूढ़े लोगों को निकाल दिया है, और अभी तो कोविड निकला है, कोविड के टाइम पे इतना बुरा हाल हुआ है, हमने आंखों से देखा है। उस टाइम भी हमने NGO में कराई है। मेरी एक फ्रेंड है सरिता भाटिया जी, मैं भी कभी कभी उनके साथ साथ देती हूँ, वो बहुत अच्छा कार्य करती है, मैं उनका नाम ले रही हूँ, मेरी फ्रेंड है। हम मिलकर कोरोना में भी हमने करा, उनके साथ और लोग भी बहुत अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं। मेरे से भी जितना हो पाता है मैं जाकर करती हूँ।
0: मेरे मन में एक प्रश्न ये
1: जी जी,
0: जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं,
1: हाँ जी,
0: आज के माहौल में जो सकारात्मक
1: पॉजिटिविटी
0: सोच
1: से,
0: है,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: वो बहुत कम है। जब हाँ आप इस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, साथ में प्रभु का नाम भी जुड़ा है, तो कितनी संतुष्टि आपको और आपकी टीम को या आपके लोगों को मिलती है?
1: मेरी टीम को मेरे साथ रहने में बड़ी संतुष्टि मिलती है। वो किसी और मंडली में जाना भी नहीं चाहती हैं, बल्कि मेरी मंडली में ऐसी ऐसी लेडी थी जो बुजुर्ग हो गई हैं अब, जिनके आने का भी नहीं मुझे रहता कि वो आएंगी कीर्तन में या नहीं आएंगी, बट फिर भी वो कैसे तैसे करके मेरे साथ रहती हैं। और जो मेरे साथ जुड़ता है उसको खुशी मिलती है, और जो मुझे समझ नहीं पाया उसके लिए मेरे पास नहीं है वर्ड, जो मुझे जो समझ नहीं पाया उसके लिए मेरे लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, बट फिर भी मैंने उनको छोड़ा नहीं है, मैं अपना कर रखती हूँ सबको। जो आए वेलकम है उसका, और जो मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहे वो अपनी खुशी में खुश रहे।
0: श्रोताओं को मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु के नाम के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी होती है। और आज हम जो बात कर रहे हैं रेणु मेहता जी के साथ, उसमें भी हमें सार अभी तक यही मिला है कि प्रभु ने जब हमें ये जिंदगी दी है, हम जितना भी इसका सदउपयोग कर सकें उतना हमें करना चाहिए। रेणु जी, आपने वृंदावन का नाम लिया। वृंदावन हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में एक बहुत बड़ा स्थान है।
1: जी जी जी।
0: मैं ये जानना चाहता हूं कि हमें वृंदावन के बारे में आप कृपया विस्तार में बताएं और कौन सा भक्ति गीत उसके बाद आप हमें सुनाएं।
1: ठीक है। वृंदावन से पावन धाम शायद कोई हो, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी साक्षात विराजमान है और उनका साक्षात करते ही लगता है कि उन्होंने हमें निहारा है, हम उनको निहार रहे हैं। उनके पैरों से लेके धीरे धीरे धीरे धीरे हम जब दर्शन करते हैं तो लगता है कि वाकई में ही हम बात कर रहे हैं आपस में दर्शन करते हुए। ये उसी को ही होता है भाई, जो मन से करता है। मन के बिना या लगन के बिना बोलना अलग है और समझना अलग है। अपने मन को जो शांति मिलती है दर्शन करके, वो अलग है। अब मैं बोल के जाऊं, बोलना, बोलने से कोई मेरी बात को नहीं समझ पाएगा, मगर मुझे जो एहसास होता है, मैं अपना एहसास ऐसे बयान नहीं कर सकती वर्ड्स में। तो वृंदावन ऐसा धाम है जो हमने बचपन से ही वृंदावन आना सीखा है। जी। मैं आज तक एक बार अपनी लाइफ में वैष्णो माता गई हूं, शादी के बाद 30-32-33 साल हो गए। वैष्णो माता मैं नहीं जा पाई दोबारा। ठाकुर जी से ही मुझे लगाव है, मेरी राधा रानी से मुझे प्यार है। राधा रानी के महल में जाते ही ऐसे लगता अपने घर में आ गए हैं, हम यहीं से गए हैं और यहीं अपने घर में आ गए हैं।
0: और शायद
1: राधा रानी के महल में ऐसे महसूस होता है कि वहां हम वहीं से गए हैं और वहीं आकर बैठे हैं, उस आंगन में बैठे हैं, प्रांगण में बैठे हैं। वहां कूदने को, गाने को मन करता है, नाचने को मन करता है। मैं सब करके आती हूँ, कुछ मिस नहीं करती हूँ। फिर जो खुशी मुझे मिलती है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो वृंदावन ऐसे ऐसे लोगों ने आके रहना शुरू कर दिया है, हमारे आउट ऑफ इंडिया से भी लोग देखो रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने कुछ पाया है ना। एरी मैंने प्रेम रतन धन पायो, रतन ही है ये हीरे ज्वारा सो भी बहुत बढ़िया रतन है। प्रभु का नाम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो वृंदावन के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने को, मगर वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे राधे जपना जीवन में, उसको उतारना। कहते पहले राधा रानी के दर्शन करके आओ बरसाने से, फिर आकर साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करो। आपको इतने प्यारे दर्शन होंगे, आपके मन की आंखें खुलेंगी कि हाँ वाकई में इस धरती पे भगवान है जो इस सृष्टि को चला रहा है। कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग में भी साक्षात भगवान है इस सृष्टि में, उनका वास है। आते तो वो इंसानों के रूप में ही है, तो इंसानों को पहचानना आना चाहिए। भगवान उसी में ही है, उसी में ही है।
0: तो एक भजन हो जाए।
1: बिल्कुल जरूर भजन हो जाए।

रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो अपने शब्दों में और अपने स्वरों में हमें वृंदावन के दर्शन करवाए। एक विराम हम लेते हैं और ये बातचीत हम जारी रखते हैं।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आप इस समय मेरे साथ बने हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 7 में, और हमारे साथ हैं श्रीमती रेणु मेहता जी। रेणु जी, कार्तिक मास इस समय चल रहा है, इस पावन मास में प्रभु भजन सभी लोग करते हैं
1: जी,
0: इसके बारे में आप जरा हमें और हमारे श्रोताओं को विस्तार में बताएं।
1: कार्तिक मास भी अपने आप में एक मास है, बहुत पावन मास है ये। कहते ठाकुर जी खुद यहाँ धरती पे भ्रमण करते हैं, हमारे जो देवी देवता हैं वो भी भ्रमण करते हैं कार्तिक मास में। और जो घर घर में जाकर प्रभात फेरी होती है, मंदिरों में जाया जाता है, पूजन किया जाता है, हम बड़े बूढ़ियों और हमारी जो दादियां नानियां हैं सब करती थी। और अब आज भी हम अपने मंदिर में जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग जो लेडीज हैं हम उनसे सीखते हैं बहुत कुछ, वो कैसे कैसे पूजा करती हैं, आंवले की करती हैं, तुलसी माँ की करती हैं, सब सीखते हैं, हम भी सीख रहे हैं अभी। इतना हमें कुछ नहीं आता मगर सीख रहे हैं हम आगे। और बहुत ही ये पावनमय और शुद्धता से भरा हुआ ये मास है, जिसमें सुबह उठ के हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं, वहाँ भजन कीर्तन में जुड़ जाते हैं। फिर किसी को घर पे भी करवानी होती है प्रभात फेरी, हम जाते हैं और प्रभु का गुणगान करते हुए ही गलियों से निकलते हैं और प्रभु का गुणगान करते हुए गलियों में से घर वापस आते हैं। और इसमें मेरे साथ बहुत संगत जुड़ जाती है, सुबह संगत जुड़ते जुड़ते पता ही नहीं लगता कब 50 लेडीज हो गई, कब 100 हो गई। पूरा आनंदमय वातावरण होता है सुबह 4:30-5 बजे से लेके 7:30 तक। ऐसे लगता है हम जैसे देव भूमि में घूम रहे हैं और देव नगरी में घूम रहे हैं, किसी देवताओं की शरण में रह रहे हैं। वो समय इतना शुद्धता से भरपूर होता है, पॉजिटिविटी वाला होता है कि उसमें हम अपना कुछ भी गम

0: कुछ दुख प्रभु की शरण में कहे तो वो शायद खत्म हो जाता है।
1: खत्म हो जाता है। रेणु जी, हमने भी बचपन से प्रभात फेरी के बारे में सुना भी है, देखा भी है
0: जी।
1: और जब सवेरे सवेरे हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, आपके साथ जितने भी लोग जुड़ जाते हैं
0: जी,
1: तो कितनी खुशी महसूस होती है जब आप प्रभु के लाई में उन सब लोगों को जोड़ते हैं।
0: हाँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्यों, मुझे सबका संग मिलता है तो मैं सबको देख के खुश होती हूँ। मेन खुशी ये होती है कि जो नहीं भी उठता पूरे साल, मेरे कहने से वो उठकर घर से बाहर आ जाता है और मेरे साथ चल पड़ता है, वो जो खुशी होती है ना मेरे मन में, वो मैं बयान नहीं कर सकती। क्योंकि सारा साल सब अपने घर में सोते हैं, सर्दी का टाइम है, सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, अपना बिस्तर छोड़ना, पर मेरे कहने पे, क्योंकि मुझे नाम दिया गया हिटलर दीदी का
1: आपने तो मेरे अगले सवाल का जवाब
0: वो प्यार से मुझे सभी हिटलर दीदी ऐसे कहती हैं, सभी मेरी मंडली वाले, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे साथ जुड़े हुए कुलीग्स जितने भी हैं कीर्तन में जाने वाले, वो सबको मैं दिल से तो बहुत प्यारी हूँ, बट थोड़ी जुबान की मैं सख्त हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे नाम दिया हिटलर दीदी।
1: तो मैं तो चाहूंगा रेणु जी, आप हिटलर दीदी किस तरीके से लोगों को जोड़ती है ये भी आप बता दीजिए।
0: प्यार से जोड़ती हूँ, प्यार ही है, मगर मैं जब किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करती या किसी गलत वातावरण को बर्दाश्त नहीं करती तो वो थोड़ा सा मेरा गुस्सा एग्रेसिव होती हूँ, तो फिर वो कहती है नहीं, उनको भी लगता है ये सही कह रही हैं, तो उन्होंने प्यार से ही मुझे नाम दिया है हिटलर दीदी का।
1: अच्छा, अच्छा।
0: गुस्से से नहीं,
1: अच्छा, अच्छा।
0: प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत प्यार करती हैं सभी मुझसे, और मेरे कहने पे सुबह उठ जाती हैं, मेरे साथ चलती हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं है।
1: दिल से कहता हूँ, आज पहली बार मैंने सुना है कि हिटलर दीदी प्यार से भी कहा जा सकता है।
0: कहा जा सकता है, कहती हैं वो, कहती भी हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्वाभाविक है, जहाँ चार लेडीज होती हैं वहाँ गॉसिप होता है, बट फिर भी मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी उनको कभी गलत नहीं कहा।
1: एक तरीके से आप उन सबको लीड भी करती
0: हैं, लीड करती
1: हैं
0: जी जी। लीड करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य है ये भी, सबको ले जाना, घुमाना, सत्संग में ले जाना, फिर एक सत्संग में कार्यक्रम को पूरा 3 घंटे चलाना है तो मुश्किल है, पर मेरी राधा रानी मेरे साथ है तो मुझे मुश्किल नहीं लगता है।
1: तो कौन सा भजन आप इस दौरान गाती हैं, तो कृपया हमारे श्रोताओं तक?
0: भजन तो बहुत है, अनगिनत भजन है, कोई मैंने भी नहीं लिखे, मैं भी गाए हुए भजनों में से ही गाती हूँ, बट मुझे रस आता है तो मैं सुना देती हूँ।
1: प्लीज।
0: श्याम पिया मोरी रंग

तोरे रंग रजवा मोहे सुहागन कीनी रे मोसे नैना मिलाई के। सुहागन करना, खाली सिंदूर डाल के सुहागन नहीं, सुहागने तो सब हैं, अपने पतियों की सुहागने सब हैं, मगर ये ऐसा सिंदूर है नाम का जो प्रभु हमारी मांग में डालता है, हमारे मन में डालता है।

बहुत खूब बहुत खूब। आज तो हम कृष्णमयी और हरिमयी हो गए हैं सब। इस कार्यक्रम का अब समय समाप्ति की ओर है।

0: आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। वृंदावन में जो लोग रहते हैं भगवान के चरणों में, उनकी खुशी ज्यादातर किस में होती है? कैसा उनका समय वहां पर व्यतीत होता है?
1: वृंदावन में जो लोग रहते हैं, जो घर बार नहीं है जिनका,
0: जी,
1: जो सड़क पर ही रहते हैं या किसी आश्रम में रहते हैं या कहीं आश्रय लेके रहते हैं, उनका जीवन तो बड़ा दुखमय है, सुखमय नहीं है। बट वो लोग इस आश्रय से वहां वृंदावन में बस गए हैं या चले गए हैं कि वो मुक्ति का धाम है, शायद हमारी मुक्ति यहाँ हो जाए। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, कुछ जवान भी हैं, कई लोग घर छोड़कर चले गए हैं कि शायद हमें ठाकुर जी की दर्शन हो
0: जी।
1: कभी तो कभी दर्शन होंगे
0: जी।
1: माला जपने से होंगे या उनकी सेवा करने से होंगे। तो अंदर से तो वो टूट कर गए हैं, कहीं से भी गए हैं वृंदावन में, बट वहां जाके उनको जो आंतरिक शांति मिली है या वो वही रहना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारी मुक्ति यही हो, ठाकुर जी के चरणों में, वृंदावन धाम में, यमुना मैया के किनारे हम यही रमे रहें, भक्ति भावना में रमे रहें, हरे कृष्णा का जाप करते रहें और हमारी मुक्ति यहाँ हो।
0: आपने जिस संस्था की बात की, क्या आप वहां जाके उन लोगों की भी कुछ मदद करते हैं या उनके साथ रहते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं साथ रहती तो नहीं हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए जैसे जाती हूँ तो मैं अपने मन से जो भी करना चाहती हूँ मैं करके आती हूँ। उनसे कई बार मैं फोटोएं भी खींच के आते हैं, हम लोग बड़ी 4-5 लेडीज 10 हैं ऐसी जिनको मैं हमेशा वृंदावन जाती हूँ तो
0: उनसे मिलके
1: मिलके आती हूँ, या गोस्वामी जी हैं हमारे, उनके थ्रू उनको भिजवाया जाता है जो भी भिजवाना होता है। ये सब गुप्त होता है, मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में दिखावा नहीं करा।
0: बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर आज अगर हम किसी की मदद करते हैं तो जितनी हम मदद नहीं करते हैं उतनी हम उसकी
1: वो
0: बखान करते हैं,
1: वो फिर हर्ट करता है किसी को, मन दुखाता है। अगर हमने सेवा करके दिखा दिया, हर्ट कर दिया, तो वो सेवा काहे की रही फिर। तो इसमें एक संस्था है जहाँ पे बुजुर्ग लोग वहां रहती हैं, जो विधवाएं रहती हैं ज्यादा, मैंने अपने उसमें शेयर भी करी है फेसबुक पे वो वीडियो। वहां की एक बुजुर्ग औरत ने मुझे 2-4 लाइनें गा के सुनाई थी एक दिन। मैंने बोला माता जी भजन सुनाओ
0: जी।
1: तो उन्हीं का ही सुनाया हुआ मैं सुनाती हूँ, तो फिल्मी सॉन्ग है ये, बट उन्होंने माता जी ने गाया, मैं उनके मुंह से सुना तो मैं आपको सुना रही हूँ। 80 साल की वो बुजुर्ग औरत है, कॉटन की साड़ी पहनती हैं, वाइट, जब भी कहती हैं कि वाइट साड़ी पहनना पसंद करती हैं वो, मैं वाइट ही उनको लिए लेके जाती हूँ। वो कहती थी, मेरे रोते नैना पूछे, बोलो जग तिखवैया, छोड़

0: उसने, मैया जी ने मुझे ये लाइनें क्यों सुनाई, उनका बेटा उनको वृंदावन छोड़ गया कि हम आपकी देखरेख नहीं कर सकते। फादर के गुजरने के बाद वो उनको वृंदावन छोड़ गया, तो वो रोई भी बिलकाई भी, मगर उसने अपने मन से कहा कि एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, जब बच्चों के घर बसते हैं तो हमें थोड़ा अलग होना ही है। तो मैंने बहुत अच्छा करा, मैं वृंदावन आ गई, यहाँ बस गई, ठाकुर जी के चरणों में रहती हूँ, दिन रात माला जाप करती हूँ, शायद मुझे मुक्ति मिले और मैं उनके गोकुल धाम में वास करूं।
1: रेणु जी, ये बहुत ही भावुक पल है, क्षण है हम सबके लिए, और मैं आशा करता हूं कि श्रोताओं के लिए भी है। माँ ही एक ऐसी व्यक्ति है इस दुनिया में जो सबको पालती है,
0: मगर माँ
1: और
0: को कोई
1: यही
0: नहीं पाल
1: माँ है
0: सकता।
1: जिसको बच्चे बड़े होने के बाद
0: हाँ
1: छोड़ देते हैं, नहीं
0: हाँ
1: पालते
0: माँ
1: हैं।
0: को नहीं पाल सकता कोई। माँ बहुत भारी पड़ती है, चाहे वो चार भाई हो चाहे एक ही लड़का हो।
1: रेणु जी, आप आज हमारे इस स्टूडियो में आए कि
0: जी
1: आप ये बताएं कि आपको यहाँ आके कैसा लगा?
0: मुझे यहाँ आके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरा इंटरव्यू देने का आपके साथ बैठ
1: जी
0: के।
1: जी
0: मैं गाया तो बहुत है मैंने, आस्था में गाया, संस्कार में गाया, बड़े बड़े स्टूडियो में गई मैं, दिव्या चैनल में गाया, बट यहाँ आके मुझे जो वातावरण मिला, जो मैंने ऑब्जर्व करा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अपने मन की बातें करी हैं यहाँ बैठ के, वहां तो सिर्फ गाया जाता था,
1: जी
0: यहाँ बातें करी हैं मैंने अपने, मेरे जो दिल में था वो मैंने बयां करा है।
1: रेणु जी,
0: आई एम वेरी
1: आपका
0: थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे आज बुलाया और आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया।
1: रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। मैं चाहता हूँ कि अंत में कुछ आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहें।
0: हाँ जी, मैं जरूर कहूंगी, जैसे कि हमारे मन के अंदर ही हमारा आत्मा राम है।
1: जी
0: अगर हमारा, कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मन के अंदर शुद्धता है तो भगवान कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है।
1: जी
0: हम ढूंढते तो बाहर है, वो हमारे अंदर ही बैठा है,
1: जी
0: वो अभी भी मुझे सुन रहा है बोलते हुए।
1: जी
0: तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े पहुंचे हुए शंकराचार्य सब यही कहते हैं कि मन में अंदर ही भगवान है, भगवान कहीं बाहर नहीं है। फिर भी मैं दो चार लाइनें पंजाबी में बोलना चाहूंगी,
1: प्लीज
0: अगर इजाजत हो
1: प्लीज
0: तो।
1: प्लीज प्लीज

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
5: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: करूंगी शोर, बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज के कृषि समाचार। बाजरे की जड़ों पर हमला कर रही है सफेद लट, अगस्त से अक्टूबर तक निगरानी जरूरी। फसल के आसपास पेड़ों पर जमा कीड़ों को बारिश के बाद नष्ट कर दें। बाजरे की फसल में सफेद लट के प्रीड भूरे व हल्के भूरे रंग के होते हैं। ये मानसून की बारिश के बाद भूमि से शाम को अंधेरा होने पर निकलते हैं। आसपास के पेड़ों पर इकट्ठे होकर पत्तों को खाते हैं और सुबह होने पर वापस जमीन में चले जाते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कांबोज ने बताया कि इसकी लट अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार की होती है। ये सफेद रंग की लट, जिसका मुंह भूरे रंग का होता है, बाजरे की जड़ों को काटकर अगस्त से अक्टूबर तक नुकसान करती है। इससे ग्रसित पौधे पीले होकर सूख जाते हैं। इनसे बचाव के लिए पहली या दूसरी रात्रि को वृक्ष हिलाकर नीचे गिराकर एकत्रित करें व उनको मिट्टी के तेल के घोल से डालकर नष्ट कर दें। कीड़ों को मारने के लिए पहली, दूसरी व तीसरी बारिश होने के बाद वृक्षों पर 0.04% मोनोक्रोटोफॉस 36 SL या 0.05% कुलिन फास 25 EC का छिड़काव करें। प्रति एकड़ में 5 फोरमैन ट्रैप लगाएं किसान। फॉल आर्मीवर्म HAU के बाजरा अनुभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव ने बताया कि फॉल आर्मीवर्म प्रमुख रूप से मक्का का सर्वाधिक हानिकारक कीट है। इसका अतिक्रमण फसल में भी देखने को मिल रहा है। इसके अतिक्रमण की पहचान पत्तों पर लंबे या गोल से आकार कटे फटे छिद्रों से होता है। इसकी छोटी बड़ी मटमैले रंग की सुंडियां पौधों की गोब को खाती हुई मिलती है। ऐसे करें नियंत्रण। प्रति एकड़ में 5 फोरमैन ट्रैप लगाएं। गोब में सूखी रेत व चूने का 9:1 मिश्रण डालें। बड़ी सुंडियों को हाथ से मार दें। सप्ताह में डाई ड्रेको कार्ड, जिसमें 50,000 परजीवीकृत अंडे हो, खेत में विभिन्न पौधों पर लगाएं। इस कीट के लिए 200 लीटर पानी में मिलाकर 5% प्रकोप तथा 5% नीम घोल या 1 लीटर अजाडिरेक्टिन 1500 PPM प्रति एकड़ की दर से छिड़कें। लाल बालों वाली सुंडियां करती है अधिक नुकसान। लाल बालों वाली सुंडियां जुलाई के दूसरे पखवाड़े से अगस्त के अंत तक नुकसान करती है। ये सुंडियां रोशनी की तरफ आकर्षित होती है, इसलिए बारिश के बाद 1 माह तक लाइट ट्रैप का उपयोग करें। जिन पत्तों पर सुंडियां लगी है उनको तोड़कर जमीन में दबा दें। बड़ी सुंडियों को रोकथाम के लिए 250 मिलीमीटर मोनोक्रोटोफॉस 23 SL या 500 मिलीलीटर क्विनिलफॉस 25 EC को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। बुवाई के 10 से 15 दिन के अंदर एट्राजिन छिड़कें। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बाजार की फसल में रोग, खरपतवार और पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। अधिक नमी होने पर जोगिया रोग का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए संक्रमित पौधों को तुरंत नष्ट करें। जरूरत पड़ने पर प्रति एकड़ 500 ग्राम मेनकोजेब या जिनेब का छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय पर निराई गुड़ाई करें या बुवाई के 10 से 15 दिन के भीतर एट्राजिन का छिड़काव करें। संकर बाजरे में नाइट्रोजन की दूसरी और तीसरी मात्रा निर्धारित समय पर दें। जस्ते की कमी देखने पर 0.5% जिंक सल्फेट का 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करने की सलाह दी गई है। जुलाई अगस्त में शुरू करें बागबानी।
मिलेंगे भरपूर फल। किसान वैज्ञानिक तरीकों से लगाएं आम, पपीता, अमरूद और नींबू के पौधे। जुलाई व अगस्त का महीना बागवानी व नए पौधारोपण के लिए सबसे उत्तम है। इन दिनों होने वाली बारिश के कारण वातावरण व मिट्टी में भरपूर नमी होती है। इससे नए पौधों की जड़ों को मिट्टी में पकड़ मजबूत होती है। ऐसे में जो किसान खेत या बगीचे में आम, अमरूद, पपीता व नींबू के पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं तो ये सही समय है। करनाल के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी के अनुसार पौधारोपण की 100% सफलता केवल तभी संभव है जब मिट्टी की तैयारी और रोपने की विधि वैज्ञानिक व सही हो। सही पोषण और भरपूर मिट्टी जड़ों के तेजी से विकास को सुनिश्चित करती है। गड्ढे का आकार व दूरी। आम के लिए 3x3x3 फीट लंबाई चौड़ाई गहराई का गड्ढा खोदें। पौधों के बीच 10x10 मीटर की दूरी हो। अमरूद नींबू के लिए 2x2x2 फीट का गड्ढा व 5x5 मीटर की दूरी रखें। पपीते के लिए 1.5 से 2 फीट का गड्ढा करें। धूप दिखाना। गड्ढा खोदने के बाद खुला छोड़ दें। धूप लगने से मिट्टी में मौजूद कीट दीमक नष्ट हो जाते हैं। उर्वरक और खाद का मिश्रण। गड्ढे से निकली मिट्टी में 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद, आधा किलोग्राम नीम की खली व 50 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाएं। विभिन्न फलों के पौधे रोपने की सटीक विधि। अमरूद। अमरूद के पौधे जलभराव को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें समतल जमीन से थोड़ी ऊंची उठी हुई जगह यानी मेड पर लगाएं। रोपण के समय पौधों की पिंडी यानी मिट्टी का गोला नहीं टूटना चाहिए। आम। पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ग्रेफ्टेड यानी कलमी हिस्सा मिट्टी की सतह से कम 6 से 8 इंच ऊपर रहे, नहीं तो पौधे में फंगस लग सकती है। पौधे की सभी रुखे चारों ओर से मिट्टी को पैरों से दबाएं ताकि जड़ों के पास हवा का कोई भी रिक्त स्थान ना बचे। पपीता। इस पौधे तने के गलन रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें ऊंची मेड पर लगाएं जो तने के पास बारिश का पानी बिल्कुल ना रुके। नींबू। नींबू के पौधे लगाते समय मिट्टी में नीम की खली का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें जड़ों के रंग जल्दी लगते हैं। पौधारोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें। पौधे लगाने के बाद बांस की लकड़ी लगाएं। मानसून में पौधों के तने के पास पानी का इकट्ठा होना सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए जल निकासी की उचित व्यवस्था पहले दिन से ही सुनिश्चित करें। तेज हवा से नए पौधों को टूटने से बचाने के लिए पौधे के बगल में एक मजबूत बांस की लकड़ी गढ़कर उससे सूतली से बांध लें। यदि रोपण के बाद बारिश न हो रही हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। गवार में पत्ती झुलसी रोग का खतरा बढ़ा। 60 दिन की फसल में कीटनाशक छिड़कें। मानसून में फसल की लगातार निराई गुड़ाई करते रहें। गवार की फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का आक्रमण हो सकता है। बिजाई के 55 से 60 दिन हो गए हैं तो खेत में खड़ी गवार की फसल का निरीक्षण जरूर करें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कांबोज ने बताया कि यदि गवार की फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लक्षण नजर आए तो 200 लीटर पानी में 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 30 ग्राम
स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाकर छिड़काव करें। गवार में जेसन की रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर मेलाथियोन 50 ईसी मिलाकर छिड़काव करें। किसान समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें, समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहें। लोबिया में हरा हॉपर का प्रकोप मानसून में हो सकता है। हरा हॉपर की रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 200 लीटर पानी 200 मिलीमीटर मेलाथियोन 50 ईसी का मिश्रण करके छिड़काव करें। पहली कटाई बुवाई के 55 दिन के बाद और दूसरी कटाई 50% फूल आने की अवस्था में की जा सकती है। ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि आपको इन कृषि समाचारों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए ताकि हम उस जानकारी को बाकी सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये थे आज के कृषि समाचार। मिलते हैं आपसे अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, उन्नत रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 megahertz, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ

0: रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
0: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर

आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं वो हमारा मेन कारण होता है। जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेडलेट डिपोजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज की सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनुरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं।

अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: पेश है कार्यक्रम सरगम, अंक एक, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
3: पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ किरणी। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं पतिता फिल्म के गीत के साथ, जिसको स्वर दिए हैं लता मंगेशकर ने, लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप फिल्म भाभी का गीत सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था चित्रगुप्त का और बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। लीजिए अब सुनिए साथी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत शकील बदायूनी का और संगीत दिया है नौशाद ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म रात और दिन से, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गाया है लता मंगेशकर और मनाडे ने, और इसके गीतकार है शैलेंद्र।

अब हम आपको सुना रहे हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म का गाना, जिसको गाया है बंसरी सेन गुप्ता ने और जिसके गीतकार है रविंद्र जैन और संगीतकार भी है रविंद्र जैन।

अब आपको सुनाती हूँ फिल्म वक्त का गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। संगीतकार है रवि और गीतकार है साहिर लुधियानवी।

प्रोग्राम का अगला गाना है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म गुमराह से, जिसका म्यूजिक दिया है रवि ने और जिसके बोल लिखे हैं साहिर ने।

पेश है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, फिल्म पत्थर के सनम से।

अब पेश है फिल्म एक नजर का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पेश है गाना पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 1, प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग व रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सके। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा।
1: वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खान नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे।
0: आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। यह कहने का मेरा मतलब है कि आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम गौर करें तो इंसान आदतन आलसी होता है, उसकी नेचर में ही मस्ती है और मस्ती करने में उसको बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहा जाए 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए तो वह बड़ी मस्ती में देखेगा, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे। मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख

उस गांव की गलियों से जब जब तू गुजरा होगा, चांद भी आसमां से तुम्हें देखने को उतरा होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जान जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जान जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा।

प्यारे गजल आप सुन रहे हैं रमेश मराठा के साथ। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज्म तन्हाई में छेड़ा जब तेरी यादों ने। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज्म तन्हाई में छेड़ा जब तेरी यादों ने।

रात मचा गया कहर, बहुत अजाब था इंतजारी सहर, हम ही बेहोश थे वरना रक्स करते थे सामने साकर, कदम कदम पे साथ ही आखिर। जिंदगी पिला गई जहर, तुम्हें पाना कोई बात नहीं, क्या करें रूठी है मकर।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। आपके सुझावों के अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोग्रामों में बदलाव ले आएं, और जो आप सुनना चाहते हैं हम और हमारी टीम वही कोशिश करती है। आप सभी अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं उसके बारे में, और अगर आपके पास कोई सुझाव है आप सुझाव भी हमारे पास भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या वॉइस नोट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हम हर दिन आपको हमारा नंबर नोट कराते हैं, आज भी कराएंगे कुछ क्षणों के बाद। एक खास विषय पर आज बात करेंगे आपके साथ, और फिर सुनाएंगे आपको कुछ पंक्तियां और साथ में कल के कार्यक्रमों का विवरण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मारहटा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:22। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी, और आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। ये सामुदायिक रेडियो अंबाला से प्रसारण करता है, और अंबाला के लिए इसको स्वीकृत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। बातों और नगमों की ये शाम यही थम रही है। दिन भर रेडियो वितस्ता पर इतना प्यार बरसाने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। श्रोताओं, आज के दिन के बारे में जानते हैं। आज 16 अगस्त 2026 का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहद पावन है। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी यानी दुर्गा गणपति चतुर्थी है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन सारे कष्ट दूर हो और घर में सुख समृद्धि आए, ये हमारी कामना है, और हम सभी श्रोताओं के लिए ऐसी कामना हमेशा करते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दुनिया भर में इस दिन नेशनल एयरबॉर्न डे यानी नेशनल एयरबॉर्न डे और मनोरंजन स्पोर्ट्स डे से जुड़े नेशनल रोलर कोस्टर डे जैसे दिन मनाए जाते हैं। दोस्तों, ये था विषय आज का, और आप सभी के लिए हर दिन के लिए 4 पंक्तियां ले आता हूं, आज भी पंक्तियां लाया हूं और आप सभी के नाम करता हूं। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आप सभी से आज के लिए विदा लेने का। जाने से पहले आपके इस दोस्त भारत सोपोरी की तरफ से ये खास पंक्तियां सभी आप सभी के नाम। आज की पंक्तियां यूं है, कल कल बहती वितस्ता की धारा सा ये सुहाना सफर चलता रहे। कल कल बहती वितस्ता की धारा सा ये सुहाना सफर चलता रहे, हम रहे न रहे ये सुरों का कारवां हर दिल में मचलता रहे। हम रहे न रहे ये सुरों का कारवां हर दिल में मचलता रहे। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से महके आपकी हर एक सुबह, गणपति बप्पा की आशीर्वाद से महके आपकी हर एक सुबह, और वितस्ता की फिजाओं में प्यार का ये नगमा सदा सजता रहे, और वितस्ता की फिजाओं में प्यार का ये नगमा सदा सजता रहे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताता हूं कल के कार्यक्रमों का विवरण। कल 17 अगस्त 2026 सोमवार, हफ्ते की शुरुआत के दिन हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 7:05 पर सोमवार को आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, कल एपिसोड 3 होगा। हमारे साथ होंगे डॉक्टर शीतल कुमार। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय, एपिसोड 11 होगा, और कल के लिए हम आपके लिए लाए हैं समाज और हम कार्यक्रम। इस कहानी को पेश करेंगे नरेश शर्मा, और 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और ये कार्यक्रम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर तैयार किया गया है। और इसके बाद संगीत की सभा जारी रहेगी, और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7 बजे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7 होगा, पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। कल की कड़ी है, काश फुर्सत होती।
यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का, और आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। जो ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसको तैयार किया है हमारी कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। आज के इस प्रसारण को यहीं समाप्त करते हैं और इन सुरों को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह की पहली किरण के साथ मैं भारत सोपोरी फिर लौटूंगा आपके फिजाओं में सिर्फ एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। सुनते रहिए हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। आप अपना ख्याल रखिए, अपना घर परिवार का ध्यान रखें, बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दें, और कल तक सुबह के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।